0: बताया रे।
1: ए, क्या बताया रे?
2: अपन बोला तू मेरी लैला, वो बोली देखता है साला। अपन जब भी सच्ची बोलता है उसको झूठ काहे को लगता है।